सुखायाद आ आ मेरे ताल पे नाच ले बाबू डुक डुक चलता है मेरे हुस्न का

0: चार आज किसी से हो गया हमको, आज किसी से हो गया हमको
1: क्या
0: प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार
1: हलुआ बाबू जी हलुआ।

0: माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी, माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी। आज हमारे घर में दे दो, आज हमारे घर में दे दो,
1: क्या
0: तार तार का ओ राजा, तार तार का ओ राजा, तार तार का। आज कभी तो हो गई आंखों, आज कभी तो हो गई आंखें, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।

0: दिल गए हम
1: या?
0: हार हार हार ओ राजा हार हार हार ओ राजा हार हार हार आज किसी पे हो गए आज किसी पे हो गए चार चार का ओ राजा चार चार का ओ राजा चार चार का
2: आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए बिराटा।

अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता दी

होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 10, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत पिचकी जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत पिचकी जाए। दिला का दिला का जो जो जो जो दिला का दिला का जो जो

प्रयाग न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा तडा, डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा तडा, डेड़ा ता डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

चल बेला आंचल दिल पे बिजली टूटे रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिला का दिला

कुछ हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला का दिला का जो जो जो जो दिला दिला का दिला का जो जो

प्रयाग न जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबियत बितकी जाए। डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिटकी बिटकी जाए। दिला का दिला का

होश हमारे पंछी बन के हो गए नौ तो ग्यारह ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए बारह। होश हमारे पंछी बन के हो गए नौ दो ग्यारह इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए बारह। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला

प्यारी प्यारी बगल मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए वो कब तक।

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, न पैसे का लफड़ा जहाँ। ये तो दुनिया है व्यापार की, इसमें अपना ठिकाना कहाँ। बचताना ना छोड़।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: आज राम जन्म की बधाई है बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है बधाई है।